0: सेफ हुफटी व पी मेगा हर से थो धेती व मेरी मेरे खाओ
1: साफ है यपी अत्ति है नीपुपी उत्तिक है ये पुपी सिक्क सिक्क निलमा पी तस्को तस्को नाच्न लुपी मदन कृष्णीय लागि सदा सदा हनी भपी अहिले मदन कृष्णीय दुःख सुख खन झ्याबले कने भपी दाजु किजा ततके कक काकी थोम्बा थोमा बाजे बजे आजु अजी पासपी पासबा पी व पासमा पी सक्कसित भाग्याचे भाग्य भने जीव मदन कृष्ण तगा तैरियो ख लगि छो ख यसो जे जीमा सक्कस्या जे जीमा छिक्पी सक्कसित मर्गुने जन यक्कु यक्कु रक्षयामा रक्षयामा मुखो छिक्पी गब्ले ठेक मर्गुने जो चाची यो चाहले गुने जो गजु ठेक्क सुकुपति जी हाल्त यो मेत हो जिउ खुवाल्नु मसे वेमा परमेश्वर छिक्पी सक्सित

0: रेडियो मिरमिरे 89.4
1: मेगाहर्ज।
2: होइन के आउँछ रे, कुन रेडियोमा आउने हो?